जब संभ कर मदम माजो भर गए मामच गर्मी बार आया मिनट गर्मी दिपे मामम अगर दुखा दर समाज